0: युवा लोग देश के भविष्य है, युवा लोग देश के निर्माण की शक्ति है।
1: उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें। रेडियो आवाज ताजिक, दिलों की आवाज़।

0: युवा हमारे परिवार के कुल दीपक, समाज के भावी कर्णधार और रक्षा के स्वर्णिम भविष्य है। नए पौधा निर्माता और समाज की आधारशिला है। युवा शक्ति समाज की रीढ़ होती है। युवा समाज के लिए प्राण वायु के समान होते हैं। साथ ही युवा शक्ति समाज के लिए बहुत और भविष्य के सेतु होते हैं। वे समाज के जीवा मूल्यों के प्रतीक होते हैं। उनकी आंखों में सपने देखने की एक ज्योति और शक्ति दोनों होती है। युवा वर्ग देश का भविष्य होने के साथ साथ हमारे समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: नमस्कार, मैं खुद अपने आप को जवान मानता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आगे के भी अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए बहुत कुछ कर लूँ। वैसे कि मैं 2015 को भारत में था, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में हिंदी सीखने के लिए गया था और वहाँ जाके मैं भारत संस्कृत सीख के आया हूँ। भारत जो ताजिकिस्तान से दो कनेक्शन होती है वो जाके सीख के आया हूँ कि आगे का भी बहुत से इन दोनों देशों के लिए बहुत मेहनत करें, इन दोनों के कनेक्शन का भी ठीक कर ले। जैसे कि आप जानते हैं भारत और ताजिकिस्तान के दो रिश्ता बहुत अच्छा है जवानों के लिए, खास करके इन दोनों को हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं और वो भी सब युवक होते हैं। आप जानते हैं भारत में ताजिक लोग बहुत दूर जाते हैं, एज ए टूरिज्म के लिए जाते हैं या पढ़ाई के लिए जाते हैं या रहने के लिए भी जाते हैं कभी कभी। और खास करके हमारे जो नगर है दुशनबे, वो पूरे अगर आप चलते रहें सड़कों पे आप जवानों को देखेंगे कि बागों में बहुत बहुत सड़कों पे घूमते रहते हैं, मतलब खुशी करते हैं, मस्तियां हैं। और ये सब हर साल जो युवाओं का हमारे सरकार की तरफ से सहायता होता है, खास करके हमारे प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से श्री मुमले रहमान से, और उसके बाद हमारे दुशनबे के जो हेड है रुस्तम मुमली से, इन दोनों की तरफ से हमारे यहाँ बहुत बहुत सारे सहायते होते हैं कि हम कोशिश कर लेंगे कि इनके जो ख्वाहिश है, इनके जो उम्मीद है हमसे, हम पूरा कर लें और बहुत मेहनत कर लें, अपना जो सारा ताकत है इसमें रखें। आगे का भी जो है मैं अपनी तरफ से और पूरी जवानों की तरफ से ये बात कहूँगा कि हम हिम्मत में रखेंगे कि सब कुछ कर दे, अपना सारा कुछ रखते हैं इस पर। हम जो युवक होते हैं, हम जो जवान है, हम नई सीढ़ी है, हम जो भी कर लेंगे भविष्य जो कंट्री का है वो मतलब भविष्य युवकों के हाथ में होती है। जो युवक मतलब अगर वो मतलब कुछ बुरी काम कर ले तो ये इसका जो भविष्य है वो बुरे हो जाएगी। तो अगर अच्छा ही करे, भलाई करे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। जो हमारे देश में है, खास करके हमारे सरकार की तरफ से युवक होते हैं जो जवानों यूनिवर्सिटी को ख़त्म करके आगे में वो एकदम रेडी हो जाते हैं काम पे, वो हमारे सरकार बहुत बहुत सहायता देती है। और हमारे जो संग्रहालय में है सारे जो स्टाफ होते हैं वो जवान है, खास करके जैसे कि आप मेरे को देख रहे हैं कि मैं जवान हूँ और आगे भी कभी नई सिरे आ जाएंगे जो हम बुरे हो जाएंगे और उसके हम जवानों का भी सहायता दे देंगे।
0: किसी भी देश में वहाँ की युवा शक्ति के समाज के जीवा मूल्यों, सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत का प्रचार प्रसार और स्थायित्व प्रदान करती है। साथ ही युवा शक्ति ही एक सुसंस्कारी समाज का निर्माण करती है। इसलिए हर युवा शक्ति में एक आदर्श व्यक्ति, नेतृत्व क्षमता के गुण, जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य और स्वयं सेवा की भावना होनी चाहिए। साथ ही युवाओं में सदैव रक्षा के प्रति प्रेम, प्रेरक विचार से उदात भावनाएं, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक आधार, स्वाभिमान, त्याग तथा आत्मगौरव की भावनाएं होनी चाहिए, क्योंकि आदर्श समाज निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होती है। युवा वर्ग समाज का भविष्य होने के साथ साथ ही वे समाज के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा भी होते हैं। वे आदर्श समाज और उन्नत समाज के आवश्यक धुरी होते हैं। ताजिकिस्तान में लगभग 57% जनसंख्या की आयु 45 वर्ष से कम है। वर्तमान दौर में हर युवा शक्ति को समाज के विकास में अपना योगदान देना होना, न कि वे सिर्फ उसका एक हिस्सा बनकर रह जाए। आज हर युवा शक्ति को अपनी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें उचित अवसर प्रदान कर सभी परिस्थितियों से जुड़ने का समर्थन सिर्फ युवाओं में ही है। उल्टे प्रवाह का उलटकर सीधा करने का साहस सिर्फ युवा ही कर सकता है। इसलिए युवा शक्ति को हमेशा उचित दिशा की तरफ ही प्रेरित रहना चाहिए, जिसके कि खुद भी अनेक तरह की बुरी आदतों के भटकाव से बच सके। साथ ही हमारे समाज का विकास सफल तब पूर्वक हो सके और हमारे ताजिक समाज प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। युवा शब अक्सर जीवन तथा आनंद उत्साह और जुनू के साथ जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि युवा पीढ़ी के लोग जोश से भरे हुए हैं। वे नई चीजें जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और दुनिया में नई खोजों का पता लगाने के लिए तैयार रहते हैं। वे उच्च ऊर्जा से परिपूर्ण है और पिछले पीढ़ियों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुरूप नहीं ढलना चाहते हैं। वे सभी चीजों पर तर्कों को लागू करने का प्रयास करते हैं और बड़ों की कट्टरपंथी सोच कर सवाल उठाते हैं। यद्यपि वे आमतौर पर बाद में परेशान हो जाते हैं। तजिकिस्तान सरकार ने शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि देश में हर बच्चे को शिक्षा मिल सके। मजबूत युवा बनाने के लिए पहला कदम शिक्षा प्रदान करना है। माता पिता और शिक्षकों को भी अपने बच्चों का ऐसे तरीके से पोषण करना चाहिए ताकि वे जिम्मेदार युवा बने। तजिकिस्तान के युवा प्रतिभाशाली है जो देश को विभिन्न क्षेत्रों में गौरवशाली महसूस करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ताजिकी युवाओं के योगदान के बारे में सभी को पता है। विभिन्न खेलों में ताजिकी युवाओं द्वारा जीते हुए पदक ये दर्शाते है कि वे कितने प्रतिभाशाली है। सदैव राष्ट्रीय गौरव की सुरक्षा के लिए युवाओं ने ही अपने कदम बढ़ाए है। शंका चाहे सीमाओं पर हो अथवा सामाजिक और राजनीतिक, इसके निवारण के लिए अपने देश के युवा युवतियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आवश्यकता यही है कि अपने हृदय में समाज निर्माण की कसक उत्पन्न करें और अपनी भीखी शक्तियों को एकत्रित करके समाज की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में लगाएं। ताजिक समाज की प्रगति ही अपनी प्रगति और उन्नति है। इसी श्रेष्ठ विचार के आधार पर ही युवा शक्ति संगठन शक्ति बनकर समाज को समृद्धि उन्नति व प्रगति के मार्ग पर ले जा सकती है। एक बार फिर युवा हृदय से ये आशा की जा रही है कि वे अपने मूर्छा जरिता संकीर्ण स्वार्थ व अहमान्यता को त्याग कर समाज निर्माण के अभूतपूर्व सांस्कृतिक दिग्विजय अभियान में स्वयं को जोड़ कर अपने समाज राष्ट्र व विश्व के उज्जवल भविष्य को साकार करने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाए। समाज एवं राष्ट्र निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का होता है। तजिकिस्तान के स्वतंत्रता में भी युवा शक्ति का सर्वाधिक योगदान रहा है। यहाँ बहुत प्रतिभाशाली युवा लोग काम करते हैं और हर महीने हमारे कर्मचारी युवा लोग ज्ञान का अभ्यास करने के लिए विदेश भेजा जाता है।
1: जब मैं इंडिया गया था, ये बहुत अच्छी याद है, ये हम जो भारत में गए थे सब हमको एज अ फॉरेनर मानता था, कि सोचते थे कि हाँ ये विदेशी है, ये इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं है। तो जब मैं घूमता तो सब मेरे को देखते थे, वो बोलते थे कि हाँ ये अपना है, ये भारतीय है, क्योंकि मैं धारी लगा के कपड़ा कुर्ता है ना कुर्ता पाजामा पहन के अपने हाथ में सारा कुछ लगा के इंडिया में घूमता रहा था। और ऐसे एक खास याद है कि जब हम ताजमहल गए थे, जैसे कि आप जानते हैं ताजमहल विदेशी लोगों के लिए 1200 रुपया है तो भारतीय लोगों के लिए 20 रुपया है। जब मैं वहां गया था और मैं बोला भाई साहब एक टिकट दे दीजिएगा, तो उन्होंने एक 20 रुपये का टिकट मेरे को दे दिया। जब हमारे दोस्त जो है वो अलग अलग देशों से जाके वहां पढ़ाई करते थे, उनके लिए 1200 रुपये गया। तो जब मैं अपना टिकट उनको दिखाया तो बोले साला तुमने क्या कर दिया कि 20 रुपये में तुम्हें दे दिया। पर ऐसी अलग अलग तरह की यादें हैं इंडिया से लाया हूं। जैसे कि आप जानते हैं जो आदमी भाषा को अच्छी तरह से, जो भी जबान अंग्रेजी है रूसी है या हिंदी है खास करके, अगर वो अच्छी तरह से जाने तो उधर में अगर जब वो जाएगा तो प्रॉब्लम के बिना वो देश इसको मेहमान की तरह कबूल करेगा और जो भी उसके पास है वो दे देगा। जैसे कि मैं इंडिया गया, इंडिया में हमें अच्छी तरह से कबूल कर दिया और वापस अच्छी तरह से भेज दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं जब वहाँ गया था तो लोग मुझे नहीं समझे कि मैं ताजिकिस्तान से हूँ, वो बोले थे कि हाँ मैं एक भारतीय हूँ, एक उनके भाई हूँ। और इस तरह की बहुत अलग अलग कुछ है कि मैं इंडिया से लाया। जब हमारे प्रेसिडेंट अपने सरकार के लिए या लोग के लिए भाषण देते हैं या संदेश देते हैं या सभा होता है, वो अपने स्पीच में बोलते हैं कि जो जवान लोग हैं खास करके, वो उनको ज़रूर है कि भाषा सीखें, कि 4-5 से ज़्यादा भाषा सीखें। ऐसा नहीं है कि रूसी सीखा अंग्रेजी सीखा ये बस, मतलब उससे भी ज़्यादा जितना मतलब हिम्मत है जितना सकते हैं, कि खास करके यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं कि अंग्रेजी रूसी हिंदी, खास करके जो नेशनल यूनिवर्सिटी है जो वहाँ पे हिंदी अंग्रेजी अरबिक पश्तू ये बहुत सारे मतलब भाषाएं सिखाई जाती है। मैं सोच रहा हूँ कि एक देश की तरक्की जब होती है ہوئی ہے جب ان کی سرکار اچھی طرح سے جوانوں کو خاص کر کے لڑکیوں کو خاص کر کے سہایتا دیتے جیسے کہ مجھے انہوں نے دے دیا کہ میں انڈیا جا کے سکھ پڑھائی کر کے آیا ہوں نیشنل یونیورسٹی میں کر کے آیا ہوں سب بھاشا سیکھا ہوں اور میں بہت بہت ان سے شکر گزار ہوں دھنیواد ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک موقع دے دی کہ ہم اپنے آپ کو دکھا دیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور آگے کبھی میں شکر گزاری سے اپنا سارا ہمت اس پہ رکھوں گا کہ اپنے دیش کو اپنے وطن کو ترقی دے
0: मानव सभ्यता सदियों से विकसित हुई है और फिर ही की अपनी सोच और विचार होती है जो समाज के विकास की दिशा में योगदान देते हैं। हालांकि एक तरफ मानव मान और बुद्धि समय गुजरने के साथ काफी विकसित हो गए हैं, वही लोग भी काफी बेसब्र हो गए हैं। आज का युवा प्रतिभा और क्षमता वाला है। आज का युवा सीखने और नई चीजों को तलाशने के लिए उत्सुक है। अब जब वे अपने बड़ों से सलाह ले सकते हैं तो वे हर कदम पर उनके द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहते हैं। युवा फिर ही आज विभिन्न चीजों को पूरा करने की जल्दबाजी में है और अंत में परिणाम प्राप्त करने की दिशा में इतना मग्न हो सकता है कि उन्होंने इसका चयन किसके किया इसके ओर भी ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि विज्ञान प्रौद्योगिकी गणित वस्तुकला इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई है पर हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि अपराध की दर में भी समय के साथ काफी वृद्धि हुई है। तश्किसान सरकार का भी लक्ष्य युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर है। निष्क्रिय होकर बैठने के बजाय युवाओं को देश के विकास और प्रगति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। युवा दिमाग को प्रोत्साहित और सशक्त बनाने के लिए देश की सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य युवाओं की सही दिशा में संभावित रूप से निर्देशित करना है जो संपूर्ण रूप से राष्ट्र को मजबूत करने में मदद करेगा। देश में हर बच्चे को शिक्षा मिले ये सुनिश्चित करने के लिए भी कई शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तजिकिस्तान सरकार लिंग भेदभाव नहीं करती। एक राष्ट्र जो अपने युवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें विभिन्न पहलुओं और कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकार देता है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

ताजिक सभ्यता इतिहास और संस्कृति बहुत प्राचीन और संपन्न है। ताजिक लोगों के लोक कला, संगीत और परंपराएं विदेशियों का ध्यान भी आकर्षित करता है। हमारे

कार्यक्रमों के दौरान हमने कई हिंदुस्तानी कलाकारों से बात की थी जिन्होंने ताजिक संगीत में सफल हुए हैं। इस समय एक हिंदुस्तानी लड़की और उसकी ताजिक गानों के बारे में बात करेंगे जिसने ताजिक संस्कृति में रुचि रखी और मशहूर ताजिक कलाकारों और लोक गीतों को ताजिकिस्तान और हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए पेश की। उसकी गानों में से एक है ताजिक लोक लोरी अल्लाह।

0: से विराज ताजिकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटी की पांचवी कोर्स की विद्यार्थिनी है। पांच साल पहले वो ताजिकिस्तान आई और यूनिवर्सिटी में ताजिक भाषा सीखने लगी। भाषा के अलावा ताजिक गाने भी उसको अच्छी लगी। इससे पहले हिंदुस्तान में गिफ्टी हिंदी और मलयालम में गाने गाती थी। उसकी अच्छी आवाज़ देख के उसके शिक्षिका ने गिफ्टी को ताजिक गाने पेश किया। ताजिक गाने गाना गिफ्टी को अच्छा लगा। वो कहती हर कार्यक्रमों में जो यूनिवर्सिटी और उसके बाहर आयोजित होता है वो भाग लेती है। गिफ्टी ने इस गाने के बारे में ये बात कही।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं गिफ्टी सिवराज एहान ताजिकिस्तान में अविसिना मेडिकल इंस्टीट्यूट में पांच कोर्स में पढ़ती हूँ। यहाँ इन पाँच सालों में मुझे हर साल ताजिक गाना का मौका मिला है और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूँ। और इन सबका श्रेय जाता मेरी आवाज़ क्लास में सुनकर मुझे गाना का अवसर देने वाली मेरी ताजिक मैम श्रीमती सुहरा मैम। उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी से परिचय करवाया और यूनिवर्सिटी से मैं यहाँ के भिन्न भिन्न गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में भी भाग लेने का अवसर मिला। इनमें कुछ प्रोग्राम्स थे, नवरोज प्रोग्राम, यूथ डे, वीमेंस डे प्रोग्राम। इन प्रोग्राम्स में मैंने कई गाने गाए। उस में एक है गाना आला। यह एक प्रागा ललबी है जो एक माँ की ममता को दर्शाता। माँ ए अपने बच्चे को सुनाने से पहले अपनी मधुर आवाज़ में अपने बच्चे के कानों में गूंजती है। एक गाना एक माँ का उसके बच्चे के तरफ स्नेह को प्रकट करता। इस दुनिया में माँ के ज़्यादा उसके बच्चे को कोई और प्यार नहीं कर सकता। उसका स्नेह अमूल्य है। ये गाना दर्शा को भी बहुत पसंद आया। ये गाना मुझे यूनिवर्सिटी ने सुझाव दिया। शुरू शुरू में कुछ कुछ वाक्य पढ़ने और जाने में मुश्किल थे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद गाना आसान निकला। जो ताजिक गाने में गए वे ज़ारे अर्थपूर्व है और यह गाने भी मज़ेदार है। नए एक राज्य में मेरे को अपनी कला को दर्शने मौका मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और यह उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मुझे अवसर मिलते हैं।
0: आपको याद दिलाया कि कई साल पहले हमने अपने प्रोग्राम में गिफ्टी को आमंत्रित की थी और उन्होंने ताजिकिस्तान पर अपने नए गाने को पेश किया था। आप उस इंटरव्यू का एक पार्ट आपके लिए पेश करते हैं।

जैसा कि गिफ्टी ने बातचीत में हमारे साथ कहा, विभिन्न सरकारी प्रोग्राम्स में उसको ताजिक गानों को गाने की मौका मिलती है। इससे पहले गिफ्टी कई गाने पेश की थी, पर अलग गाना विशेष रूप से ताजिक लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि ये लोक गाना है, लोरी है, जिसको गाना आसान नहीं होता। और इसमें एक वीडियो भी बनाया गया था जिसमें गिफ्टी ताजिक पोशाक में ताजिक माँ की तरह लोरी गा के बच्चे को सुलाती है। ये बहुत दिलचस्प था और ताजिक लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा कि एक विदेशी लड़की को उनके परंपराओं और रीति रिवाजों, संस्कृति और भाषा में दिलचस्पी है।

0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: से प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज ताजी की हिंदी भाग की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प पायान विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के दीते राम जो प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

0: युवा लोग देश के भविष्य है, युवा लोग देश के निर्माण की शक्ति है।
1: उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति, साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें। रेडियो आवाज ताजिक, दिलों की आवाज़।

उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें। रेडियो आवाज ताजिक, दिलों की आवाज़।

इस समय एक हिंदुस्तानी लड़की और उसकी ताजिक गानों के बारे में बात करेंगे जिसने ताजिक संस्कृति में रुचि रखी और मशहूर ताजिक कलाकारों और लोक गीतों को ताजिकिस्तान और हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए पेश की। उसकी गानों में से एक है ताजिक लोक लोरी अल्लाह।

0: इफ्ती सेवराज ताजिकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटी की पांचवी कोर्स की विद्यार्थिनी है। पांच साल पहले वो ताजिकिस्तान आई और यूनिवर्सिटी में ताजिक भाषा सीखने लगी। भाषा के अलावा ताजिक गाने भी उसको अच्छी लगी। इससे पहले हिंदुस्तान में गिफ्ती हिंदी और मलयालम में गाने गाती थी। उसकी अच्छी आवाज़ देख के उसके शिक्षिका ने गिफ्ती को ताजिक गाने पेश किया। ताजिक गाने गाना गिफ्ती को अच्छा लगा। वो कहती हर कार्यक्रमों में जो यूनिवर्सिटी और उसके बाहर आयोजित होता है वो भाग लेती है। गिफ्ती ने इस गाने के बारे में ये बात कही।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं गिफ्ती सिवराज एहान ताजिकिस्तान में अविसिना मेडिकल इंस्टीट्यूट में पांच कोर्स में पढ़ती हूँ। यहाँ इन पाँच सालों में मुझे हर साल ताजिक गाना का मौका मिला है और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूँ। और इन सबका श्रेय जाता मेरी आवाज़ क्लास में सुनकर मुझे गाना का अवसर देने वाली मेरी ताजिक मैम श्रीमती सुहरा मैम। उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी से परिचय करवाया और यूनिवर्सिटी से मैं यहाँ के भिन्न भिन्न गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में भी भाग लेने का अवसर मिला। इनमें कुछ प्रोग्राम्स थे, नवरोज प्रोग्राम, यूथ डे, वीमेंस डे प्रोग्राम। इन प्रोग्राम्स में मैंने कई गाने गाए। उस में एक है गाना आला। यह एक प्रागा ललबी है जो एक माँ की ममता को दर्शाता। माँ ये अपने बच्चे को सुनाने से पहले अपनी मधुर आवाज़ में अपने बच्चे के कानों में गूंजती है। ये गाना एक माँ का उसके बच्चे के तरफ स्नेह को प्रकट करता। इस दुनिया में माँ के ज़्यादा उसके बच्चे को कोई और प्यार नहीं कर सकता। उसका स्नेह अमूल्य है। ये गाना दर्शा को भी बहुत पसंद आया। ये गाना मुझे यूनिवर्सिटी ने सुझाव दिया। शुरू शुरू में कुछ कुछ वाक्य पढ़ने और जाने में मुश्किल थे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद गाना आसान निकला। जो ताजिक गाने में गए वे ज़ारे अर्थपूर्व है और यह गाने भी मज़ेदार है। नए एक राज्य में मेरे को अपनी कला को दर्शने मौका मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और यह उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मुझे अवसर मिलते हैं।
0: आपको याद दिलाया कि कई साल पहले हमने अपने प्रोग्राम में गिफ्ती को आमंत्रित की थी और उन्होंने ताजिकिस्तान पर अपने नए गाने को पेश किया था। आप उस इंटरव्यू का एक पार्ट आपके लिए पेश करते हैं।

जैसा कि गिफ्टी ने बातचीत में हमारे साथ कहा, विभिन्न सरकारी प्रोग्राम्स में उसको ताजिक गानों को गाने की मौका मिलती है। इससे पहले गिफ्टी कई गाने पेश की थी, पर अलग गाना विशेष रूप से ताजिक लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि ये लोक गाना है, लोरी है, जिसको गाना ऐसा नहीं होता। और इसमें एक वीडियो भी बनाया गया था जिसमें गिफ्टी ताजिक पोशाक में ताजिक माँ की तरह लोरी गा के बच्चे को सुलाती है। ये बहुत दिलचस्प था और ताजिक लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा कि एक विदेशी लड़की को उनके परंपराओं और रीति रिवाजों, संस्कृति और भाषा में दिलचस्पी है।